0: पता है, न्याय विभाग भारत सरकार ने गरीब और जरूरतमंदों को न्याय दिलाने की प्रक्रिया को किया और भी आसान।
1: हाँ बिल्कुल, टेलीलॉ और न्याय बंधु सेवाओं का हो गया है एकीकरण।
0: अब चाहे टेलीलॉ के माध्यम से मुफ्त कानूनी सलाह लेनी हो
1: या न्याय बंधु में पंजीकृत वकीलों से कोर्ट में निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए जुड़ना हो,
0: अब दोनों एक ही ऐप पर उपलब्ध। डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
2: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க நிலைப்பன்மலை 102.6.

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: நேயர்களின் கவனத்திற்கு NCERT விளம்பரதார நிகழ்ச்சி திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை பிற்பகல் 3:30 முதல் 4 மணி வரை FM ரெயின்போ 102.6 MHz ஒலிபரப்பாகும். நேயர்கள் கேட்டு பயன்பெறுங்கள்.
3: வர்ணஜாலமாய் இது உங்கள் ஆகாஷ்வாணி திருநெல்வேலி வானொலியின் பண்பலை 102.6.

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका बहुत बहुत उमंग कार्यक्रम में। गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी मिलौदास जयदास देवेश दास धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
2: सुख एवं समृद्धि के लिए प्रकृति से प्रेम करना आवश्यक है।
3: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। संदेश छोटा जरूर है लेकिन सब कुछ कह जाता है। आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला हमें संदेश मिला है नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू जी का।
2: जेल रोड दिल्ली से लाल बाबू दीवाना और उमा राज।
3: और पुराना तालाब डुमराव बिहार से वलीउल्लाह अंसारी असमा नाज अंसारी और सलमा सुल्तान।
2: यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से।
3: और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश कुमार शर्मा जी का। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे उमंग कार्यक्रम से। तो प्रस्तुत है हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। तो विमलेश जी, कल हमने चर्चा की थी जापान के चाय समारोह की
2: जी।
3: तो आज
2: आज अजीत जी, जब चाय की बात कल हो ही गई है तो क्यों ना बात करें आज कॉफी की। लेकिन याद रखिए, इस सप्ताह हम बात कर रहे हैं दुनिया की प्रसिद्ध पेय परंपराओं की।
3: जी विमलेश जी, हम परंपराओं पर ही बात करेंगे
2: जी।
3: कल हमने जापान की बात की थी जो एशिया महादेश में है, तो क्यों ना आज चलें एक और महादेश अफ्रीका।
2: लेकिन बात तो हम कॉफी की कर रहे थे ना।
3: जी बिल्कुल, आज हम चर्चा करेंगे अफ्रीका के एक देश इथियोपिया के कॉफी समारोह की
2: जी।
3: इसे इथियोपियन कॉफी फेस्टिवल भी कहते हैं।
2: अजीत जी, कॉफी की खोज भी तो इथियोपिया में ही हुई थी।
3: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो एक कहावत है ना, जो बोले सो कुंडा खोले
2: जी।
3: तो जरा आप ही बताइए श्रोताओं को कि कॉफी की खोज

0: कैसे हुई थी?
1: जी बताती हूँ श्रोताओं, लगभग 9वीं शताब्दी की बात है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के अनुसार इथोपिया के एक गांव में कुछ चरवाए पास की घाटी में बकरियां चराने के लिए गए थे। उनमें कलड़ी नाम का एक चरवाहा था। उसने देखा कि कुछ बकरियां गायब हैं।
0: तो क्या हुआ फिर?
1: वो उन्हें ढूंढता हुआ जब घाटी के दूसरे छोर पर पहुंचा तो क्या देखता है कि उसकी बकरियां एक विशेष पौधे के लाल फलों को खाने के बाद बहुत सक्रिय हो गई हैं। अजी जी, अब आप आगे बताइए ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। तो क्या हुआ श्रोताओं कि चरवाहे ने जब उस फल को चखा ना, तो उसे भी थोड़ी ताजगी और स्फूर्ति का अनुभव हुआ।
1: जी
0: वो उन फलों को अपने धार्मिक अगुओं के पास ले गया। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस फल को भूनकर एक पेय बनाया,
1: जी
0: और ऐसा कहते हैं कि इस पेय ने उन धार्मिक अगुओं को रात्रि प्रार्थना के समय जगे रहने में थोड़ी मदद की।
1: जी
0: तो यही पेय आगे चलकर कॉफी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वैसे इतिहासकार ये भी मानते हैं कि ये एक लोक कथा है।
1: लेकिन ये तथ्य है कि कॉफी की खोज इथोपिया में ही हुई थी। तो श्रोताओं, अब हम चर्चा करेंगे इथोपिया के कॉफी समारोह की। इस समारोह को स्थानीय भाषा अम्हारिक में बुना कहा जाता है। जापान की तरह ही ये मात्र कॉफी पीने की ही प्रक्रिया नहीं है, लेकिन ये सम्मान, मित्रता और सामुदायिक जुड़ाव का प्रतीक है।
0: तो अब जानते हैं श्रोताओं कि यह समारोह होता कैसे है। समारोह शुरू होने से पहले कमरे या आंगन में ताजी घास और पट्टियां बिछाई जाती हैं।
1: जी,
0: फिर क्या होता है विमलेश जी?
1: सुगंधित धूप जलाई जाती है। अतिथियों के आने के बाद कच्ची कॉफी बीन्स को कोयले की आंच पर धीरे धीरे भुना जाता है ताकि उसकी खुशबू अतिथियों को और अधिक आकर्षित करे।
0: वाह वाह जी।
1: कॉफी बीन्स की खुशबू को फैलाना स्वागत और सम्मान का संकेत माना जाता है।
0: और फिर ऐसा होता है श्रोताओं कि भुनी हुई बीन्स को परंपरागत लकड़ी की ओखली में पीसा जाता है
1: जी
0: और उन्हें मिट्टी के बर्तन में उबाला जाता है। इस विशेष मिट्टी के बर्तन को ज़ेवेना कहते हैं।
1: जी
0: फिर कॉफी परोसी जाती है।
1: खास बात यह है कि कॉफी 3 चरणों में परोसी जाती है। सबसे पहले सबसे अधिक गाढ़ी कॉफी परोसी जाती है, जिसे खामोशी से पिया जाता है। उसके बाद दूसरा प्याला दिया जाता है।
0: जो थोड़ी हल्की होती है, ये इस बात का संकेत है कि अब बातचीत की जा सकती है।
1: जी
0: इस दौरान लोग बातचीत करते हैं, रिश्ते तय होते हैं, और यहाँ तक कि टूटे हुए संबंध भी जुड़ जाते हैं।
1: और अंत में तीसरा प्याला दिया जाता है, जो आशीष और शांति का प्रतीक माना जाता है। बिना तीसरा प्याला पिए उठना अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
0: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
1: जी
0: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
1: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथोपिया की शानदार कॉफी समारोह की परंपरा, जरूर बताइएगा।
0: और अब आज का प्रश्न सुनिए, आज की ही जानकारी से। तो हमारा प्रश्न है, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: इथोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800-44-0559 पर। और हाँ,
1: आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर हमारे ईमेल पर भी भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं चलिए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, भारत तू है हमको प्यारा।
1: ये कार्यक्रम गीत संगीत प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भारत भूमि का गरिमामय उल्लेख मिलता है। कार्यक्रम में भारत की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक और भाषाई विविधता को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करते हुए देशभक्ति का आह्वान किया गया है।

भारत तू है सबसे प्यारा। प्यारे बच्चों, अभी आपने सुना ये सुंदर गीत, आशा है आपको जरूर पसंद आया होगा। आपने आज अपने देश भारत के बारे में बहुत सी अच्छी बातों को सुना। आपने सुना भारत की नदियों, समुद्रों, अन्न, फल और फूलों के बारे में। सच में कितना सुंदर है ना हमारा देश। अब जरा सोचिए, अपने देश भारत की और कौन कौन सी बातें आपको बहुत अच्छी लगती हैं? सोचिए और हमें लिख भेजिए। आप हमें audio@ciet.nic.in पर अपना संदेश भेज सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी हैं, तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे, संगीतकार हरभजन सिंह, निर्माण सहयोग कुसुम लता, मार्गदर्शन अजीत होरो तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत तू है हमको प्यारा, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम।

0: नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत सभी के लिए शिक्षा को बढ़ावा देते हुए NCERT असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने के क्रम में कार्य कर रहा है। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है पेरियार नदी।
1: इस कार्यक्रम में दक्षिण भारत की पेरियार नदी, उसकी पारिस्थितिकी और जनजीवन में उसके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम में दक्षिण भारत के लोक संगीत और संस्कृति की भी झलक मिलती है।

केरल प्रदेश में थेकडी नामक स्थान अपने प्राकृतिक वैभव के लिए खास तौर से जाना जाता है। चारों ओर हरियाली ही हरियाली, भांति भांति के पेड़ पौधों की सुगंध से भरा पूरा वातावरण, पर्वतों की दर्शनीय कतारें और इस जादुई मंजर को और भी अधिक लुभावना बनाती है पहाड़ों के बीचों बीच बनी पेरियार झील।

0: चारों ओर का इलाका पेरियार टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। पेरियार यूं तो टाइगर रिजर्व है, यहां बाघों को संरक्षित किया गया है, मगर ये अपने हाथियों और तरह तरह के दूसरे पशु पक्षियों के लिए भी जाना जाता है, जिन्हें देखने के लिए यहां सैलानियों की आवाजाही बनी रहती है। इन्हीं सैलानियों में दिल्ली की रहने वाली सुनीता भी हैं, जो अपनी केरल की सहेली लक्ष्मी के साथ यहां घूमने आई हैं। आइए चलते हैं उनके साथ पेरियार की यात्रा पर।
1: लक्ष्मी लक्ष्मी, वो देखो हाथी, लगता है अपने परिवार के साथ झील में नहाने आया है।
2: अरे
1: और देखो उसका वो छोटा सा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। चलो चलो पास चलकर देखते हैं।
2: हाँ हाँ सुनीता, मगर जरा संभल कर चोट मत खा जाना।
1: हाँ अच्छा सुनो, जरा मुझे अपना कैमरा देना।
2: हाँ?
1: देखो झील के बीचों बीच सूखे पेड़ों पर बैठी ये चिड़िया कितनी सुंदर लग रही है। मैं जरा इनकी फोटो लेती हूँ। हाँ
2: हाँ हाँ सुनीता, ये लो, ये पकड़ो पकड़ो।
1: क्लिक। लक्ष्मी इस पेरियार लेक के अंदर से ये सूखे पेड़ कैसे निकल रहे हैं?
2: देखो सुनीता, सन 1895 के आसपास यहाँ बहने वाली पेरियार नदी और उससे मिलने वाली एक छोटी नदी मुलायार पर बांध बनाया गया।
1: अच्छा।
2: जिसे मूला पेरियार बांध कहते हैं। और उसी की वजह से यहाँ पहाड़ों के बीच का जंगल पानी में डूब गया और उसने एक झील का रूप ले लिया।
1: ओ, तो ये पेड़ वो ही पेड़ है जो एक समय झील में डूब गए फिर धीरे धीरे सूख गए।
2: हाँ, और अब जब इनमें तरह तरह के पक्षी झुंड बनाकर बैठते हैं तो नजारा बहुत ही लुभावना हो उठता है।
1: हाँ ये तो दिख ही रहा है।

0: वैसे ये बताओ लक्ष्मी, इसे टाइगर रिजर्व कब बनाया गया?
1: इस बारे में तो मुझे कुछ खास आइडिया नहीं है। अच्छा चलो हम उनसे पूछते हैं, वो यही के कर्मचारी लगते हैं।
0: हाँ चलो
1: चलो। एक्सक्यूज मी।
2: जी हाँ कहिए।
1: जी मैं लक्ष्मी हूँ और ये मेरी दोस्त सुनीता।
0: नमस्ते।
2: नमस्ते।
1: हम लोग यहाँ घूमने आए हैं, आप हमें यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे?
0: हाँ
2: जी हाँ जी हाँ, क्यों नहीं, आपके सवालों के जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा।
1: जी
2: वैसे मैं अपना परिचय दे दूँ, मेरा नाम कमल कुमार है और मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर हूँ।
1: जी
0: बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। कमल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जगह टाइगर रिजर्व कब बनी?
2: देखिए 1933 में इस जगह को पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर स्थापित किया गया था और 1978 में इसे केरल का एकमात्र टाइगर रिजर्व घोषित किया गया।
0: अच्छा।

0: कमल जी,
1: जी
0: क्या इस टाइगर रिजर्व को पेरियार नाम पेरियार नदी की वजह से ही दिया गया है?
1: असल में सुनीता जी, इस जगह की खूबसूरती, यहाँ का वन्य जीवन, ये सब पेरियार नदी की बदौलत ही है।
0: ओहो।

0: ये जगह उष्णकटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जलवायु के क्षेत्र में आती है। यहां खूब बारिश होती है। और इसीलिए यहां के जंगल हरे भरे रहते हैं। यही कारण है कि यहां प्राणियों और वनस्पतियों की 1000 से ज्यादा प्रजातियां हैं।
1: कमल जी, वैसे पेरियार नदी तमिलनाडु से निकलती है ना?
2: हाँ सुनीता, ये निकलती तो तमिलनाडु से ही है, मगर इसका कोई 60 किलोमीटर का हिस्सा ही तमिलनाडु में पड़ता है
3: जी।
1: अच्छा,
2: बाकी करीब 240 किलोमीटर की यात्रा ये केरल के अपने घुमावदार रास्तों पर ही करती है।
1: ओह,
2: ये केरल की सबसे लंबी नदी है और मध्य केरल की लाइफ लाइन के तौर पर जानी जाती है।
3: अच्छा? बिल्कुल ठीक कहा आपने।
2: क्योंकि इससे पेरियार टाइगर रिजर्व को ही नहीं बल्कि केरल के एक बहुत बड़े हिस्से को मदद मिलती है, सहारा मिलता है।
1: अच्छा, तो तमिलनाडु में ये निकलती कहाँ से है लक्ष्मी?
2: भाई वो जगह तो मैंने देखी नहीं।
3: मैंने देखी है काफी पहले। वाह, क्या सुंदर दृश्य था उस जगह का। वैसे तमिल तो मुझे आती नहीं, मगर कहते हैं तमिल में पेरियार का मतलब होता है बड़ी नदी।
1: अच्छा।
3: और ये बड़ी नदी यानी पेरियार तमिलनाडु की शिवगिरी पहाड़ियों से समुद्र तल से कोई 1800 मीटर की ऊंचाई से नीचे आती है।
1: अच्छा।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
2: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
2: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।
1: हाँ, ये ठीक रहेगा। तो चलिए कल मिलते हैं। ओके
0: ओके,
1: बाय
0: बाय।
1: ओके।

0: सुनीता, 8 तो बजने वाले हैं, कमल जी आते ही होंगे।
1: हाँ।
0: अरे लगता है कमल जी आ गए।
2: गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी।
0: गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।
2: गुड मॉर्निंग।
3: आइए आइए, स्वागत है आपका।
2: तो भाई चलिए, मेरा ख्याल है यही लॉन में बैठते हैं।
0: जी
2: आइए, तशरीफ रखिए। हाँ हाँ, तो सुनीता जी आप पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं आप पेरियार नदी के बारे में?
3: कमल जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि पेरियार की केरल के लिए क्या अहमियत है।
2: ठीक है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इसका जवाब आपकी दोस्त लक्ष्मी जी दें, क्योंकि ये केरल के रहने वाली
0: हैं। क्यों नहीं। कमल जी, बचपन तो मेरा केरल में बीता था, मगर बाद में

0: मैं दिल्ली चली आई।
1: अच्छा।
0: मगर अक्सर केरल आना होता रहा, लेकिन हाँ जैसा कि पिताजी कहते हैं उसके अनुसार तो एक समय पेरियार की जो अद्भुत खूबसूरती हुआ करती थी ना, वो अब लुट चुकी है। मतलब ये कि इस नदी में इस कदर प्रदूषण बढ़ चुका है कि इसके अस्तित्व के लिए भी खतरा पैदा हो गया है।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
2: अच्छा अब ये बताइए, हम इस समय थेकडी में हैं, अब यहाँ से आगे ये नदी किन किन खास स्थानों से होकर जाती है?
1: देखिए, आगे जाकर घुमावदार रास्तों से गुजरते हुए ये नदी वांडी पेरियार की गहरी घाटी में पहुँचती है।

0: जाना माना व्यापार केंद्र है जो चाय, कॉफी और काली मिर्च की खेती के लिए जाना जाता है। और यहाँ कई किस्म के फूलों के खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
0: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकड्डी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
1: जी,
0: जो दुनिया का सबसे मशहूर इलायची का व्यापार केंद्र है।
1: अच्छा,
0: यहाँ इलायची के बागों को देखने का अपना एक अलग मजा है।
1: ये केरल भी क्या जगह है, चाय, कॉफी, काली मिर्च, इलायची, इस सब की खेती होती है यहाँ पर, है ना?
2: यही नहीं, पेरियार नदी के आसपास केला, नारियल, धान और रबर भी खूब उगाए जाते हैं।
0: हाँ ठीक कहा आपने लक्ष्मी जी, वांडी पेरियार के बाद अपने घुमावदार रास्ते में पेरुमथुराई और कटप्पना नदियों से मिलते हुए ये इडुक्की पहुँचती है।
1: अच्छा,
0: और इडुक्की के बाद इसमें नेरियामंगलम के पास ईडा मलियार नामक ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी मिलती है। और फिर ये नदी पेरियार बैराज से होते हुए भूथातन केतु बांध में जाती है। पेरियार के आसपास की पहाड़ियों पर कई आदिवासी जनजातियां सदियों से रह रही हैं, जैसे मन्नन मलयालम, उर्ली, मुथवन, कादर वगैरह, और इन सबका पालन पोषण भी आज तक पेरियार ने ही किया है।
2: हाँ, और अब ये आदिवासी मुनार, कट्टाबाना, इलेपारा और वाडी पेरियार की चाय, कॉफी, रबर रीक और इलायची वगैरह से लदी पहाड़ियों पर खेती का काम करते हैं।
0: हाँ।

मान्यता ये भी है कि पेरियार नदी में ही भगवान श्री राम ने गिद्धराज जटायु का अंतिम संस्कार किया था। इसीलिए ये परंपरा चली आ रही है कि हिंदू इस नदी के जल में अपने पुरखों को श्रद्धांजलि देने आते हैं और इस कार्य के लिए पेरियार के तट पर बना चिलामत्तम का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें अपने प्रियजनों के अंतिम संस्कार या अस्थि विसर्जन के लिए लोग बड़ी तादाद में आते हैं।

पेरियार के तट पर बसा मलयत्तूर ईसाइयों का बहुत मशहूर तीर्थ है। कहा जाता है कि ईसा मसीह के शिष्य संत थॉमस यहां आए थे और इस जगह को पवित्र किया था। लेकिन यहां सभी धर्मों के लोग आते हैं और मलयत्तूर की पहाड़ियों की कठिन चढ़ाई करते हैं।

0: मलयत्तर और कलडी से होकर अलवाई पहुंचने के बाद पेरियार दो भागों में बट जाती है।
1: अच्छी।
0: पहली मंगल पूजा शाखा महिला चलागुड़ी नदी से मिलकर लक्षद्वीप सागर में चली जाती है
1: और दूसरी इलूर की औद्योगिक पट्टी से होती हुई अरब सागर में समा जाती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने कमल जी?
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने लक्ष्मी जी। भारी प्रदूषण की वजह से पेरियार की मछलियों की कुछ अहम प्रजातियां तो बिल्कुल गायब ही हो चुकी हैं।
2: ओह, तो इसका मतलब पेरियार के साथ भी बिल्कुल वही हो रहा है जो देश की दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
0: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने के मुहिम में लगे हुए हैं।
2: वैसे सच कहें तो

0: ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं।
1: तो करो ना सुनीता।
0: तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पहरियार से।
2: बिल्कुल।
3: नेक काम में भला देरी किस बात की, और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है, और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बनाने की कोशिश में जुटें, आज से और अभी से। हम तो तैयार हैं, आप भी तैयार हैं ना?
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम पेरियार नदी। आशा है कि यह कार्यक्रम भी आपको जरूर पसंद आया होगा। लेकिन श्रोताओं, अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा समय भी समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
4: नमस्कार।

0: ஒழித்த அந்த பாடலுடன் திரைகாணம் நிறைவு பெறுகின்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகமது ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है. नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है.
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है. श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे. यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी. साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन तथा दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है.
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है. राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है.
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का

0: दियारा शामिल हैं। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपये से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टालो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि मात्र 1 रुपये के नाममात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। दिल्ली NCR क्षेत्र में अगले 3 दिन में गरज के साथ बारिश और धूल भरी आंधी का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhineet Shukla. Prime Minister Narendra Modi has assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, that is NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with a right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai ki jab sahi niyat se sarkar chalti hai to tez gati se vikas bhi hota hai. NDA sarkar ke in 12 varshon mein 25 crore se zyada logon ka garibi se bahar nikalna ye dikhata hai ki hamari neetiyan sahi hai. हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: On this occasion, NDA adopted a resolution lauding Mr. Modi on achieving the feat of becoming India's longest serving elected Prime Minister. BJP President Nitin Nabin said, a total of 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave. Mr. Nabin said, NDA leaders expressed their gratitude for Prime Minister Modi's leadership and congratulated him on a historic milestone. Wishes are pouring in from across the world as PM Narendra Modi has become India's longest-serving elected Prime Minister. European Commission President Ursula von der Leyen stated that India, under Mr. Modi's leadership, has landed on the moon and is shooting for the stars. Italian Prime Minister Giorgia Meloni also expressed readiness to work with Prime Minister Modi in creating new opportunities for the people of the two nations. Extending his wishes, South Korean President Lee Jae-myung stated that Prime Minister Modi has guided India's economic and developmental progress over the years and played a key role in elevating India's global stature. Prime Minister Modi has expressed gratitude to Italian Prime Minister Giorgia Meloni, Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim, German Federal

0: இரவின் மடியில் நிகழ்ச்சியில் நேயர்கள் இதுவரை குஷி, வானத்தை போல ஆகிய படங்களிலிருந்து பாடல்களை கேட்டு ரசித்தீர்கள். இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முஹம்மது ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होंगे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स, डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने बताया है कि नई दिल्ली के भारत मंडपम में एनडीए सम्मेलन में 35 राजनीतिक दलों के कुल 75 प्रतिनिधि शामिल हुए। श्री नवीन ने मीडिया को बताया है कि एनडीए वर्तमान में 22 से अधिक राज्यों में सत्ता में है, जो भारत के लगभग 75% भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया

0: आज्ञा की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे श्री मोदी। रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दे दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपये से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इन्नेस क्रेस्टिलो को हराया जबकि तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की च्यू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अखिला। Prime Minister Narendra Modi has assured that aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi last evening. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: भारत के लोगों ने पहली बार ये देखा है कि जब सही नियत से सरकार चलती है तो तेज गति से विकास भी होता है। एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: On this occasion, the NDA adopted a resolution lauding Prime Minister Modi for achieving this historic feat. BJP President Nitin Narwin said that 75 delegates from 35 political parties participated in the NDA conclave. Wishes are pouring in from across the world as Prime Minister Modi becomes India's longest-serving elected Prime Minister. Several world leaders, including European Commission President Ursula von der Leyen, Italian Prime Minister Giorgia Meloni, German Chancellor Friedrich Merz, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Canadian Prime Minister Mark Carney, and South Korean President Lee Jae-myung congratulated Mr. Modi and praised his leadership and contributions to India's growth and global standing. US President Donald Trump described Prime Minister Modi as a great one. Hailing Prime Minister Modi as the doyen of all Indian prime ministers, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said, Russia hopes Mr. Modi will continue to strengthen India-Russia relations. Mr. Modi has thanked world leaders for their warm wishes and congratulatory messages. The government has approved 22 new applicants under the third round of the production-linked incentive PLI scheme for textiles. The Ministry of Textiles said a total of 96 companies have been selected under round 3 of the scheme with a committed investment of more than 12,822 crore rupees and a projected turnover exceeding 58,000 crore rupees. Lok Sabha Speaker Om Birla has said that Parliament is not merely a platform for lawmaking but the highest expression of the aspirations, expectations and concerns of the people. He said an association with Parliament provides a unique opportunity to understand the functioning of the Indian democracy. Mr. Birla made the remarks while interacting with IAS officer trainees of the 2024 batch under the Assistant Secretaries Programme at the Parliament House. India and Tajikistan have reaffirmed their commitment to deepen their partnership and strengthen industrial, trade and economic cooperation at the 12th meeting of the India-Tajikistan Joint Commission on Trade, Economic, Scientific and Technical Cooperation. Commerce Secretary Rajesh Agarwal stressed that

0: கேட்ட அந்த பாடலுடன் நினைவில் நின்றவை நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகின்றது. இன்னும் சில நொடிகளில் ஹிந்தியிலும் ஆங்கிலத்திலும் செய்திகள் டெல்லியிலிருந்து.
1: नमस्कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को महान व्यक्ति बताते हुए उन्हें अपना अच्छा दोस्त कहा है। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं और वह आगे भी महानता और सफलता के साथ कार्य करते रहेंगे। रूस के राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। श्री मोदी ने उनके सोशल मीडिया संदेश का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारत इसराइल संबंध आने वाले वर्षों में और मजबूत होगा। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद वह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது நெஞ்சம் மறப்பதில்லை. இன்றைய நிகழ்ச்சியில் அரண்மனை கிளி மற்றும் சின்ன மாப்பிள்ளை ஆகிய திரைப்படங்களிலிருந்து ஒரு சில பாடல்கள் உலா வந்தன. தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி அஞ்சல்.
1: நமஸ்கார். ஆகாஷ்வாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகமது ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है. नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने एनडीए सरकार पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है.
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही. ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है. उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया है. राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं. रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है. राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे. इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है. यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी. नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है.
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है. राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है.
1: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है. इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है. सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है. वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है. इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपये से अधिक है. रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली यानी GNSS जमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए. इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है. प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे. श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे. दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे. 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी. प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे. उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है. इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा. उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि

अभी अपने उदय भवाकर का राग ललत में ध्रुपद सुना, पखवाज साथ की थी माणिक मुंडे ने। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब सुनते हैं उदय भवाकर का ध्रुपद गायन राग मियां मल्हार। पखवाज साथ कर रहे हैं माणिक मुंडे।

0: நேர்கள் இதுவரை கேட்டு மகிழ்ந்தது இனிய ராகம். பண்பறையில் இனி தொடர்வது ஹிந்தி மற்றும் ஆங்கிலத்தில் செய்திகள். டெல்லி ஏஞ்சல்.
1: நமஸ்கார், ஆகாஷவாணி சமாச்சார் கே சாத் மே முகமது ஜுபேர். प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना सबसे अच्छा दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया है। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा है कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने श्री मोदी को शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की दो प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपये से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता की 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी रविवार को नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दूसरे चरण में श्री मोदी 14 से 16 जून तक स्लोवाकिया की यात्रा करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा होगी। प्रधानमंत्री 16 और 17 जून को फ्रांस में G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता को उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर आज फिनलैंड में कुल तारंता वार्ता के 14वें संस्करण में हिस्सा लेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस कैस्टिलो को हराया और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की चियू पिन चियान को मात दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अखिला।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शासी परिषद की 11वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इस वर्ष की बैठक का विषय है विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास। बैठक में देश के प्रत्येक नागरिक के कल्याण और विकास को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर चर्चा की जाएगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। श्री मोदी ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों

0: गठबंधन एनडीए ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में एनडीए की बैठक में उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादे से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
1: एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही हैं, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। उन्होंने श्री मोदी को महान व्यक्ति और अपना अच्छा दोस्त बताया। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि श्री मोदी एक मजबूत, स्वस्थ और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। रूस ने श्री मोदी को सभी भारतीय प्रधानमंत्रियों में सर्वश्रेष्ठ करार दिया। राष्ट्रपति के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस को उम्मीद है कि श्री मोदी द्विपक्षीय संबंधों के विकास में अपना योगदान जारी रखेंगे। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेन और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी श्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया है।
2: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी है। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी मंजूरी दे दी है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इसमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक होगा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर की खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने बुल्गारिया के प्रधानमंत्री रूमेन रादेव से सोफिया में मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों के सुदृढ़ होने से उत्पन्न अवसरों और तेजी से बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देशों के बीच सहयोग की अनिवार्यता का उल्लेख किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने वाराणसी में एक बौद्ध मंदिर और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूटान सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। परियोजना के लिए वाराणसी में 2 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस पहल से बौद्ध पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने भूटान को ये भूमि मात्र 1 रुपये के नाम मात्र वार्षिक किराए पर 30 वर्षों के लिए पट्टे पर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Akhila. Prime Minister Narendra Modi will chair the 11th Governing Council meeting of Niti Aayog today at Rashtrapati Bhavan Cultural Centre in New Delhi. In line with Prime Minister's vision of Team India for a Viksit Bharat, this year's theme, Inclusive Human Development for Viksit Bharat at 2047, focuses on the well-being and development of every Indian, regardless of age, region, gender or socio-economic background. The meeting will deliberate on the approach to realize this vision and translate it into concrete, measurable outcomes for every citizen across the country. This meeting will bring together chief ministers and lieutenant governors to discuss the inclusive human development framework. BJP President Nitin Naman has said that a total of 7